जीवन यात्रा शीतलता की माँ, जीवन यात्रा जीवित यही माँ, अलेना पाँच छेगु जीवन या पला पला नहीं पुकी माँ, किप्स एफएम छेगु जीवन या सदायम पासा किप्स 98.3 एफएम

जीवन यात्रा शीतलता बीमा किप्स 98.3 FM जीवन यात्रा जीवित यईमा किप्स FM अलिना पा छिगु जीवन या पला पला नेपुकीमा किप्स FM छिगु जीवन या सदायम पासा किप्स 98.3 FM

ठीक कथा ये दे रूपी दया दया लवाई रूपी पाला पाला लवाई तरह जिगु छेन लफुल गजब निक्ती निक्ती खेन लफुल जाचुनी तरह लफुल मोको एरगा मामली ना मोको जिगु छेन थे चिकली छे।

जीवन यात्रा शीतलता धीमा जीवन यात्रा जीवित यही मा अलेना पां छेगु जीवन या पला पला नहीं पुकी मा किप्स एफएम छेगु जीवन या सदा यम पासा किप्स 98.3 एफएम

0: Life-Changing Quotes. बिहानको एउटा सानो सकारात्मक सोचले तपाईको पूरा दिन परिवर्तन गर्न सक्छ।
1: पुरै एक घण्टा तीनवटा मुभीजका सुपरहिट गीतहरू
2: थ्री इन वन
3: एभ्री स्याटरडे 9 AM एन्ड थर्सडे 6 PM।
4: What's the secret to success?
5: Simple. Say yes to radio advertising.
4: Your brand, our voice. One message, thousands of listeners.
5: Radio advertising. Affordable, effective, and culturally close.
4: Say yes to radio advertising, where every word makes an impact. Keeps FM 98.3 MHz. Contact 567-3114. 567-3114.
6: हजुर, न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्समा पाइन्छ मोटरसाइकल, स्कुटर, कार, भ्यान, जीप, पिकअप, हात्ती गाडी, बस, ट्रक, एक्सकाभेटर, ट्र्याक्टर, जेनेरेटर लगायत इन्भर्टरका ओरिजिनल ब्रान्डेड ब्याट्रीहरू विथ ओल्ड ब्याट्री एक्सचेन्ज फेसिलिटी।
7: सम्पर्क ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स, कुलेश्वर, काठमाडौँ। फोन नम्बर 5302678 5302678। लोकेशन को लागि गुगल गर्नुहोस्। ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स।
8: यू कैन डांस,
9: यू कैन सिंग, ऑल यू गॉट टू डू इज
10: जस्ट ट्यून इन
11: किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज़, योर कंपेनियन,
12: द रेडियो ऑफ न्यू जनरेशन।

0: कार्यक्रम कलियुग टाइम्स कलियुग टाइम्स
1: कलियुग टाइम्स एवरी डे 11 to 12 p.m.

0: हरेक शनिबार बेलुकी 10 बजे
1: हजुर न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्समा पाइन्छ मोटरसाइकल स्कूटर कार भ्यान जीप पिकअप हात्ती गाडी बस ट्रक एक्सकाभेटर ट्रैक्टर जेनेरेटर लगायत इन्वर्टर का ओरिजिनल ब्रांडेड बैटरी विथ ओल्ड बैटरी एक्सचेंज फैसिलिटी
2: संपर्क बैटरी शॉप न्यू काठमांडू इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स कुलेश्वर काठमांडू फोन नंबर 5302678 5302678 लोकेशन को लागी गूगल गर्नुहोस् बैटरी शॉप न्यू काठमांडू इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स
3: व्हाट्स द सीक्रेट टू सक्सेस
4: सिंपल Say yes to radio advertising.
3: Your brand, our voice. One message, thousands of listeners.
4: Radio advertising. Affordable, effective, and culturally close.
3: Say yes to radio advertising, where every word makes an impact. Keeps FM 98.3 MHz. Contact 567-3114. 567-3114.
5: You can dance.
6: You can sing. All you gotta do is
7: just tune in.
6: KIPS FM 98.3 MHz, your companion. The radio of new generation.
8: अब इन्टरनेट ढिलो होइन छिटो स्मार्ट र सुरक्षित
9: इन्ट्रोड्युसिङ वाइफाई 6 विथ सुबिसु सुरक्षा
10: वाइफाई 6 सँग पाउनुहोस् हाई स्पीड र स्टेबल इन्टरनेट
9: साथै सुबिसु सुरक्षाले तपाईँलाई राख्छ अनलाइन ब्राउजिङमा सुरक्षित
10: हानिकारक साइट असुरक्षित कन्टेन्ट अब सबै इन्स्टेन्ट ब्लक हुन्छ
8: सुबिसु छिटो पनि सुरक्षित पनि थप जानकारी तथा बुकिङका लागि
11: 01-42-35-888-9802-12-35-888
12: हामीलाई सुन्नुहोस् www.kipsfm.com मार्फत Just tune in, radio, naya generation ko.
11: KIPS FM 98.3 presents Pop Hour.
13: Mujhe kaise pata na chala ki tu mainu pyaar
11: Every Friday, 12 p.m.

0: Morning Tea Time Hits प्रत्येक बुधवार बिहान 7 बजे Hits FM 98.3 MHz मा
1: पुरै एक घंटा तीनवटा मूवीज का सुपरहिट गीतहरू
2: 3 in 1
3: Every Saturday 9 a.m. and Thursday 6 p.m.

0: Internet beim Tierfilm.
1: सुनाओ लो याद, सुनाओ लो गीत, बॉलीवुड गोल्डन हिट्स, कीप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज मा। आइतबार र मंगलबार दिउँसो 4 बजे, सोमबार र शुक्रबार बेलुकी 10 बजे। पुराना बॉलीवुड संगीत को जादू तपाईंकै रेडियो कीप्स एफएम मा।

life-changing quotes. सुंदरता शक्ति हो, मुस्कान हथियार हो, यो भनाई हो चार्ल्स

0: नेपाल भाषा या न्याय पुसेचौं मेता
1: सुथैया 6:30 से 7 बजे तक स्टेशन किप्स एफएम 98.3 MHz
2: किप्स एफएम 98.3 प्रेजेंट्स पॉप आवर।
3: मुझे कैसे पता न चला कि तू मैनू प्यार।
2: एवरी फ्राइडे 12 PM

0: सुनाओ लो याद, सुनाओ लो गीत, बॉलीवुड गोल्डन हिट्स, कीप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज मा।
1: दिल दीवाना, बिन सजना के।
0: आइतबार र मंगलबार दिवसो 4 बजे, सोमवार र शुक्रवार बेलुकी 10 बजे। पुराना बॉलीवुड संगीत को जादू तपाईं के रेडियो कीप्स एफएम मा।
2: History of Rock.
3: Here I am, rock you like a hurricane. Monday 3 p.m. Only on Keeps FM 98.3 MHz, your companion.
4: Keeps 98.3 FM को Bollywood Time मा अहिले तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली चलचित्रका गीतहरू।

0: मात्र किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्जमा ट्यून इन गर्नुहोस् हरेक आइतबार बिहान 7 बजे अनि हरेक सोमबार बेलुकी 8 बजे
1: कुन मेरा क्या तुलागे
2: बेस्ट रोमांटिक हिंदी सॉन्ग
3: तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं रब दिखता है यारा मैं क्या करूं
2: Every Sunday 9 p.m. and Tuesday 6 p.m.

0: 你不去装糊涂去。
1: नेपाल भाषाया न्याइपुसेचौं मेता
2: सुथेया 6:30 से 7 बजे तक स्टेशन किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज
3: किप्स 98.3 एफएम योर कंपेनियन
4: Just move your feet. Enjoy the dance beat.

0: Morning Tea Time Hits प्रत्येक बुधवार बिहान 7 बजे Hits FM 98.3 MHz मा क्लासिक हिंदी पॉप टाइम
1: चलने लगी है हवाएं सागर भी लहराए
0: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम एट किप्स एफएम 98.3

0: भाषाया न्याई बुझिजौं मित।
1: सुथैया 6:30 से 7 बजे तक स्टेशन किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज।
2: भैगोनी जाऊं छोडेर जानेलाई, भैगोनी जाऊं तर्केर जानेलाई।
3: किप्स अनप्लग्ड
2: मोडमा नहीं।
3: नेपाली आर्टिस्ट सिंगर्सहरूका अनप्लग्ड गीतहरू सुन्न नछुट्याउनुहोला। हरेक आइतबार मध्याह्न 12 बजे र शनिबार दिउँसो 4 बजे।

सौंदर्य, स्वास्थ्य र जीवन शैली संबंधी एक विशेष कार्यक्रम ब्यूटी हेल्थ एंड लाइफस्टाइल किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ज मा शनिबार बेलुकी 7 बजे, मंगलबार बिहान 7 बजे र बुधबार दिउँसो 3 बजे।

0: Morning Tea Time Hits प्रत्येक बुधवार बिहान 7 बजे Hits FM 98.3 MHz मा
1: एक फूल झरे रे के भो एक फूल झरे रे के
2: नेपाली सुपर हिट्स

0: XFM 98.3 presents Pop Hour.
1: मुझे कैसे पता न चला कि तू मैनू प्यार
0: Every Friday 12 p.m.

0: अब नेपाल भरि 14,000 भन्दा बढी हटस्पटहरुमा फ्री इन्टरनेटको मजा लिनुहोस्।
1: अब लाइफ इज अलवेज अन जहाँ पनि खुरु खुरु
0: कनेक्ट टु माई वर्ल्ड लिंक एन्ड अलवेज स्टे कनेक्टेड वेयर एभर यु आर।
2: हजुर, न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्समा पाइन्छ मोटरसाइकल, स्कुटर, कार, भ्यान, जीप, पिकअप, हात्ती गाडी, बस, ट्रक, एक्सकाभेटर, ट्र्याक्टर, जेनेरेटर लगायत इन्भर्टरका ओरिजिनल ब्रान्डेड ब्याट्रीहरू विथ ओल्ड ब्याट्री एक्सचेन्ज फेसिलिटी।
3: सम्पर्क ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स, कुलेश्वर, काठमाडौँ। फोन नम्बर 5302678 5302678। लोकेसनको लागि गुगल गर्नुहोस्। ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स।
4: Stay connected with your favorite station. Keeps FM 98.3 megahertz.
5: Join our community on Facebook for the latest updates and all the music you love.
4: And don't stop there. Follow us on Instagram and TikTok too. Search Keeps FM 98.3 megahertz and hit that follow button today.
6: The weekly countdown show of top 10 English numbers. With exclusive segments, classic choice, info house, fresh hits, and many more. Do tune into Weekly 10. Weekly 10.
7: Time, Sunday 7 p.m., Monday 9 a.m., and Thursday 2 p.m.
6: on KIPS 98.3 FM.
8: Sunaulo yaad, sunaulo geet. Bollywood Golden Hits Keeps FM 98.3
9: MHz ma.
8: Aitabar ra Mangalbar diuso 4 baje, Somvar ra Shukravar beluki 10 baje. Purana Bollywood sangeet ko jadu tapai ki radio Keeps FM ma.
10: Radio station that keeps you cool, keeps you alive, and keeps you entertained. Keeps FM 98.3 megahertz. Just tune in.
11: You really want it? You really want it?
12: Are you ready to turn up the volume and rock out like never before? Rock fever. Rock fever. Rock hits of all time.

0: 7장 어떻게
1: नेपाल भाषाया न्याय पुसेचौं मेत
2: सुथेया 6:30 से 7 बजे तक स्टेशन किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज़।

0: कार्यक्रम कलियुग टाइम्स कलियुग टाइम्स
1: Hollywood Times, every day, 11 to 12.

0: सुनाओ लो याद, सुनाओ लो गीत, बॉलीवुड गोल्डन हिट्स, कीप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज मा।
1: दिल दीवाना, बिन सजना के।
0: आइतबार र मंगलबार दिवसो 4 बजे, सोमवार र शुक्रवार बेलुकी 10 बजे। पुराना बॉलीवुड संगीत को जादू तपाईं की रेडियो कीप्स एफएम मा। तेरी झ्याप झ्याप बत्ती गएर हैरानै भयो।
2: अब धन्ना नमान्नुस्, नॉनस्टॉप पावर पाउन अब एकदमै कम खर्चिलो र भरपर्दो इन्भर्टर ब्याट्री ब्याकअप सिस्टमको लागि ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्समा सम्पर्क गर्नुहोला। सुरुवाती मूल्य मात्र 16,999 रुपियाँदेखि।
3: सम्पर्क ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स, कुलेश्वर काठमाडौँ। फोन नम्बर 5302678 5302678। लोकेशन को लागि गुगल गर्नुहोस् ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स।
4: यु क्यान डान्स,
5: यु क्यान सिंग, ऑल यु गॉट टु डू इज
6: जस्ट ट्यून इन
5: Kips FM 98.3 MHz, your companion. The radio of new generation.
7: What's the secret to success?
8: Simple. Say yes to radio advertising.
7: Your brand, our voice. One message, thousands of listeners.
8: Radio advertising. Affordable, effective, and culturally close.
7: Say yes to radio advertising, where every word makes an impact. Kips FM 98.3 MHz. Contact 567-3114. 567-3114.
9: हजुर, न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्समा पाइन्छ मोटरसाइकल, स्कुटर, कार, भ्यान, जीप, पिकअप, हात्ती गाडी, बस, ट्रक, एक्सकाभेटर, ट्र्याक्टर, जेनेरेटर लगायत इन्भर्टरका ओरिजिनल ब्रान्डेड ब्याट्रीहरू विथ ओल्ड ब्याट्री एक्सचेन्ज फेसिलिटी।
3: सम्पर्क ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स, कुलेश्वर काठमाडौँ। फोन नम्बर 5302678 5302678। लोकेशन को लागि गुगल गर्नुहोस् ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स।
10: Stay connected with your favorite station, Kips FM 98.3 MHz.
8: Join our community on Facebook for the latest updates and all the music you love.
10: And don't stop there, follow us on Instagram and TikTok too. Search Kips FM 98.3 MHz and hit that follow button today.
11: History of Rock.
12: Here I am. Rock you like a hurricane.
13: Monday 3 p.m. Only on Kips FM 98.3 MHz, your companion.
14: Kips FM 98.3 MHz.

0: एक्सप्रेस को साथ अब नेपाल भरी 14,000 भन्दा बढी हटस्पटहरुमा फ्री इन्टरनेट को मजा लिनुहोस्।
1: अब लाइफ इज अलवेज ऑन जहाँ पनि खुरु खुरु
0: कनेक्ट टु माई वर्ल्ड लिंक एंड ऑलवेज स्टे कनेक्टेड व्हेयरएवर यू आर।
2: व्हाट्स द सीक्रेट टु सक्सेस?
3: सिंपल, say yes to radio advertising.
2: Your brand, our voice. One message, thousands of listeners.
3: Radio advertising, affordable, effective, and culturally close.
2: Say yes to radio advertising where every word makes an impact. Keeps FM 98.3 megahertz. Contact 567-3114. 567-3114.
4: नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ किप्स 98.3 एफएम।
5: हजुर नमस्ते अनि स्वागत छ, यो किप्स एफएम 98.3।
6: नमस्कार किप्स 98.3 एफएम।
7: यो हो किप्स 98.3 एफएम। तपाईँ सँगको सहयात्रा।
8: हलिउड गोल्डन हिट्स।